लोग ब्रदर जॉन है ब्रदर जॉन से शालोम वेकिंग अप इज अ ब्लेसिंग सो इज दैट अली फॉर ब्रदर जॉन वेकिंग अप इज अ ब्लेसिंग बी ब्लेस्ड टू यू ऑल एक खुरुद वन ब्लेसी डे